जो मेरे मन इच्छिया तोनू कहां सुना के थे, जो मेरे मन इच्छिया तोनू कहां सुना के थे, मैं जाना नहीं चाहता अपनी जान बचा के थे, मैं जाना नहीं चाहता अपनी जान।

वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ते आए विरंगत गुर ते अमरदास रामदास सिंह हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नू समराओ श्री हर आए श्री हर कृष्ण ते आईया जिस डिठा सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नौन दया वै धाई सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी वाहे। पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता। तिन्ना प्यारियां सच्चियारियां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी वाहे। जिन्ना सिंगा सिंगणियां ने धर्म हे शहीद ते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइया चरखड़िया ते चढ़ियारिया नाल चिराए गए गुरद्वारिया की सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सुबासा संग निवाही तना दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी वाहे। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारिया दा ध्यान तरके बोलो जी वाहे। प्रथमी सरबत खालसा जी की अरदास है सरबत खालसा जी कौ वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवै चितावन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देख तेग फतह बिरद की पैच पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाए खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहेगुरु। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दे इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा पो वाहेगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वरे गुरधामा जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है तन्हां दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणिया दे मां नी ताणिया दे तान नी ओटियां दी ओट सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी आप जी दे पावन पवित्र चरणा विच अरदास बेनती है। सूरा सो पहचानिए जो लरै दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छाड़ै खेत। जून 1984 दे समूह शहीदां दी याद विच आप जी दी हजूरी अंदर संध्या वेले दे दीवान सजे सजे हुए दीवाना अंदर सौदा रै रस है बाणी दे पाठ अमृत गुरबाणी दे कीर्तन गुर इतिहास दियां विचारां ढाडी वारां वाहिगुरु सिमरन दे जाप छे पौड़ियां नंसै बाणी दे कीर्तन हुए समुची सेवा निभाउंदे आप जी दे दासरिया पासों बेअंत फुल्लां बख्श देना आईयां संगतां दियां हाजरियां दर प्रवान करनियां भेटावां प्रवान करनियां अमृत गुरबाणी दा भाव संगतां दे हिरदे वसाउणा दुखां दलिद्रां दे नाश करने सुखां दे प्रवेश करने परिवारां विच परस्पर प्यार इतफाक दी दात नाम दी दात गुरसिखी जीवन बख्शना सरबत दे कारज रास करने खालसा पंथ दी सदा चढ़दी कला करनी एकता ते इतफाक दी दात बख्शनी आप जी दे हजूर कड़ा प्रशाद दी देख सज के हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रशाद संगत विच वरताउण दी आग्या होवे हुक्मनामे दी दात बख्श के संगतां नूं कृतार्थ करो
ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੀ ਸਰ।

धूप मलयान लो पवन चवरो करे सगल बन राए फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पवखंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत भेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तोहे कहो सहस मूरत नना एक तो ही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही सब मह जोत जोत है सोए तिसदै चानन सब मह चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोत सुभावै सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अन दिन मोहे आही प्यासा कृपा जल देह नानक सारं को होए जाते तेरा नाए वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाओ साखत हर रस साधना जानिया तिन अंतर हो मैं कंडा हे ज्यो ज्यो चल है चुबै दुख पाव है जमकाल सह है सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाने दुख जन मरण पव खंडा हे अबनासी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोब खंड ब्रह मंडा हे हम गरीब मस

0: मोको कर संतन की तूरे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
1: तुद्या गे अरदास हमा, जियो पिंडा सब कौ नानक सब, कोई नौ ना जाने मेरा। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ते आए, फिरंगत गुरते अमरदास रामदासी हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नू समराउ, श्री हर आए श्री हर किशन ते आईया, जिस डिठा सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर, नौन दयावै ताई, सब थाई हुई सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई हुई सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ, दीदार दा ध्यान तरके, बोलो जी वाहे गुरु। हे निमाणियां दे मान, नी ताणियां दे तान, नी ओटियां दी ओट, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी, आप जी दे हजूर अरदास बेनती, आप जी दा कोटान कोट शुक्र है, जिन्हां ने अमृत वेले तो लैके खुले दर्शन दारे दे के संगतां नूं निहाल कीता। दीवाना दी समाप्ति तो बाद आप जी दे पवित्र सरूप दी सेवा करदिआं, सोलह साहिब बाणी दे पाठ करदिआं, बेअंत भुल्लां बख्श देना। हुण कृपा करो अपने निज स्थाना ते विराजमान हो के संगतां नूं खुशियां बख्शो, अमृत वेले दा जागना बख्शना, अमृत वेले खुले दर्शन दारे दे के निहाल करना जी। सुख होवे नाम चिते आवै, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला।

तन खेह गावै को जी लै फिर देह गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथी न आवै तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लैंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विगसै वे परवाहो साचा साहिब साच नाए भाख्या पाओ अपार आखै मंगह देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखियै जित दिसै दरबार मुहों के बोलन बोलियै जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाउ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवै जानियै सब आपे सचियार थाप्या ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन

में आखे इंद आखे गोपी ते गोविंद आखे ईश्वर आखे सिद्ध आखे किते किते बुद्ध आखे दानव आखे देव आखे सुर नर मुन जन सेव किते आखे आखण पाहे किते कह कह उठ उठ जाहे।

आदेश तिसाय आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साद संजोग विजोग दुकार चला वह लेखे आवह भाग आदेश तिसाय आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तिन चेले प्रवान एक संसारी एक भंडारी।

प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुखवाक पातशाही दसवीं छपै छंद त्व प्रसाद। चक्र चिहन अर वर्ण जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत केह। अचल मूर्त अनुभव प्रकाश समतोज कह जै गोट इंद्र इंद्राण शाहि साहान गणजै। त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत मन त्रिण कहत त्व सर्वनाम कथै कवन कर्म नाम वर्णत सुमत। भुजंग प्रयात छंद नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं कृपाले नमस्तं अरूपे नमस्तं अनूपे नमस्तं अपेखे नमस्तं अलेखे नमस्तं अकाये नमस्तं अजाये नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं अनामे नमस्तं अठामे नमस्तं अकर्मं नमस्तं अधर्मं नमस्तं अनामं नमस्तं अतामं नमस्तं अजीते नमस्तं अपीते नमस्तं अबाहे नमस्तं अटाहे नमस्तं नीले नमस्तं अनादे नमस्तं शेदे नमस्तं अगादे नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं उदारे नमस्तं अपारे नमस्तं सोए कै नमस्तं अनेकै नमस्तं अपूते नमस्तं अजूपे नमस्तं निर्कर्मे नमस्तं निर्भरमे नमस्तं निर्देशे नमस्तं निर्भेषे नमस्तं निर्नामे नमस्तं निर्कामे नमस्तं निर्धाते नमस्तं निर्काते नमस्तं निर्तूते नमस्तं अपूते नमस्तं अलोके नमस्तं अशोके नमस्तं निर्तापे नमस्तं अथापे नमस्तं तर्माने नमस्तं निदाने नमस्तं अगाहे नमस्तं अबाहे नमस्तं तरवर्गे नमस्तं असर्गे नमस्तं प्रपोगे नमस्तं सुजोगे नमस्तं अरंगे नमस्तं अपंगे नमस्तं अगम्ये नमस्तस्त्रमे नमस्तं जलाश्रे नमस्तं निराश्रे नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं अमजवे नमस्तस्तजवे अदेशं अदेशे नमस्तं अपेसे नमस्तं निर्धामे नमस्तं निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्तदेव नमस्तं अपेव नमस्तं अजन्मे नमस्तं शोभनमे नमो सर्वगौने नमो सर्वपौने नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो कालकाले नमस्तस्तदयाले नमस्तं अवर्णे नमस्तं अमरणे नमस्तं जरारंग नमस्तं कृतारंग नमो सर्वतन्दे नमोस्त अबंदे नमस्तं नरसाके नमस्तं निर्वाके नमस्तं रहीमे नमस्तं क्रीमे नमस्तं अनंते नमस्तं महंते नमस्तस्तरागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले। चाचरी छंद त्व प्रसाद। अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अपू हैं अलेख हैं अपेख हैं नाम हैं अकाम हैं अते हैं अपे हैं अजीत हैं अपीत हैं त्रमान हैं निदान हैं तरवर्ग हैं असर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजय हैं अजाद हैं अजन्म हैं अवर्ण हैं अपूत हैं अपर्ण हैं अगंज हैं अपंज हैं चूज हैं चंज हैं अमीक हैं रफीक हैं तंद हैं बंद हैं निर्बूज हैं असूज हैं अकाल हैं अजाल हैं अल्लाह हैं अजा हैं अनंत हैं महंत हैं अलीक हैं निरसरीक हैं निर्लंब हैं असंभ हैं अगम हैं अजम हैं अपूत हैं अशूत हैं अलोक हैं अशोक हैं अकर्म हैं अपर्म हैं अजीत हैं अपीत हैं अभा हैं अगा हैं अमान हैं निदान हैं अनेक हैं फिर एक हैं। भुजंग प्रयात छंद नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे
अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परपंगी परमाते समस्ती विपुते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम रूप सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपोघी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुधर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो शाहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं स्नान नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं परणासी अनूपे रूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा बृध करता अदो उर्द अर्धं अगं ओग हर्ता परं परम परमेश्वरं प्रोश पालं सदा सर्वदा सिद्ध दादा दाता दयालं अचेती अपेती अनामं आकामं समस्तो पराजी समस्तास्ततामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं पीत हैं पे हैं प्रभु हैं जू हैं देश हैं पेस हैं पुजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ती निदाने नमस्त्वं निरनाथे नमस्त्वं परमाथे नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अपंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साज साजे नमो शाशाहे नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वपोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृशं नमो सर्वकृशं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे गोकर्मं पूर्णासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धिं निवासी चरपट छंद त्वा प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल छंद त्वा प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त जोन पुरख अपार सर्व मान त्रमान देव पेव आद उदार सर्व पालक सर्व गालक सर्व कोपन काल जत्तर तत्तर विराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जाकर जन अरूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद असेख देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग जत्तर तत्तर दिशा विसा होए फैल्यो अनुराग नाम काम भीन पेखत ताम हूं नह जाहे सर्व मान सर्वतर मान सदैव मान तताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल खेल खेलन अंत को फिर एक दे पेव न जान ही जे वेद और कतेव रूप रंग न जात पात सो जान ही कह देव तात मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन चक्कर बकर फिरै चतर चक मन ही पुरतीन लोक चौदह के बिखै जग जाप ही जिह जाप आद देव अनाद मूर्त थाप्यो सबै जिह ताप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रच्यो स्वयंभव गड़न भंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख अदेश धर्म धाम सो परम रहत अभूत अलख अभेस अंग रागना रंग जा कै जात पातना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अनुस्तुत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अभंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व घायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र न जान ही जे रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जाके नेत भाखत नित
कोड सिमरत पुराण शास्त्र न आव ही वह चित मद पार छंद त्व प्रसाद गुण गन उदार महिमा अपार आसना भंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दन अनास अजान बाहु शाहन शाह राजान राजपानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग अभाप अंगत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम आदत उत्प्रचंड मित गत अखंड अलिस्या कर्म अदृश्या धर्म सर्वा प्रणाढ़ अंडन बाढ़ चाचरी छंद तो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निरनामे अकामे उजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्या चतर चक्र दान्या चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पितर न करमंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रथिस अदिस अदृश कृस भगवती छंद त्व प्रसाद कथते के आछिज देसै क्या पिज भेसै क्या गंज करमै क्या पंज भरमै क्या पिज लोकै क्या दित सोकै के विधूत बरनै के विभूत करनै के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुजा है के आशोक बरनै के सर्वा भरनै के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूपै के अनुभव अनुपै के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग विहीन के कह अधीन के रोजी रजा कह रही मैं रिहाक के पाक बे ऐब हैं के गैबुल गैब हैं के फुल गुनाह हैं के शाहान शाह हैं के कारण कुनेंद हैं के रोजी देहांद हैं के राज करीम हैं के कर्मंग करीम हैं के सर्वंग कली हैं के सर्वंग दली हैं के सर्वत्र मान्य के सर्वत्र दान्य के सर्वत्र गौने के सर्वत्र पौने के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजा के सर्वत्र राजा के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य सदैवंग प्रधान्य के सर्वत्र जाप्या के सर्वत्र थाप्या के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीमय के परमंग फहीम है के अकल अलाम है के साहिब कलाम है के हुसनुल वजू है तमामुल रजू है हमेशुल सलाम है सलीखत मुदाम है गनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है बलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम है रजूअल निदान है हरीफुल अजीम है रजायक यकीन है अनेक उल तरंग है भेद है भंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खराज है निरुक्त स्वरूप है त्रमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुयुक्त सुधा है सदैवंग स्वरूप है वेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्व साज है समस्तुल सलाम है सदैवल काम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओंगाद रूप है नाद स्वरूप है अनंगीय नामे त्रभंगी त्रकामे त्रवर्गं त्रवादे गंजे गादे सुपंग सर्व भागे सुसर्वा अनुरागे त्रिभुक्त स्वरूप है शज है शूत है के नरकंग प्रणास है पृथ्वीअल प्रवास है नृक्त प्रवाह है सदैवंग सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है नृक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी छंद अपंग है नंग है पेख है लेख है परम है कर्म है नाद है जुगाद है जय है वह है भूत है तूत है अनास है उदास है तंत है बंध है भक्त है भ्रक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है लेख है देख है अलेख है भेख है टा है गा है संभ है गंभ है नील है नाद है अनित है सुनित है जात है अजाद है चरपट छंद त्व प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता
सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं तर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल छांद त्वा प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे नंगं स्वरूपे वंगं विपुते परमाथं परमाथे सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विपुते नंगी नामे त्रिभंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी नूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात निरसाकं श्री खै मितो मीख है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती छंद तो प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है कि हुसनल चिराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दहंद है के राज ग्रहंद है के कर्मं करीम करीमुल कमाल है के हुसनुल जमाल है गनीमुल खराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सकन है रसुल फकन है कलंकं प्रणास है समस्तुल निवास है गंजुल गनीम है रजाय करीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकं प्रणास है बहिष्टुल निवास है के सर्वुल गवन है हमेशुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परम ईस है समस्तुल अधीस है अदेसुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीन उल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के अजलंग प्रकाश है के मितो सुबास है के अजब स्वरूप है के मितो विभूत है के मितो पसा है के आत्म प्रभा है के अजलंग अनंग है के मितो अपंग है मद पार चंद त्व प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मुदाम अरबर अगंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बरनर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम अंश जयंग सन भंग उपमा पार गतम तुदार जल थल अमंड दिस विस अभंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित तर तुरास आजान बाहो एकै सदाहो ओंकार आद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अंश जगात आज जिना बात अंचा जगात अनरंज बात अन टुट भंडार अन ठट अपार अडीठ धर्म अत ठीठ कर्म अण ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्व प्रसाद करुणालय है अरकालय है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कलकारन है सर्व उबारन है त्रित के तरन है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्व पास्य है सर्वनास्य है करुणाकर है विश्वंबर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मांड से खलखंड से परते पर है करुणाकर है अजपा जप है अथपा थप है अकृताकृत है अमृता अमृत है अमृतामृत है करुणाकृत है अकृताकृत है तरणी त्रित है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नरनायक है खलकायक है विश्वंबर है करुणालय है नृपनायक है सर्वपायक है पपंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आतंबस है जस के जस है पुजंग प्रयात शांत नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग शांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रं नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो जुद्ध जुद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी नृपंगी अपंगी स्वरूपे नंगी नामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी एकामे एक अचरी छंद अजय अलय भय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे पुजंग प्रयात छंद
नमस्तुल प्रणामे सुमस्तुल प्रणासे गंजुल नामे सुमस्तुल निवासे निरकामं विपूते सुमस्तुल स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सुतर्मं विपूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी क्रीमुल कुनिंदा सुमस्तुल निवासी अजायब विपूते गजायब गनी में हरियंग करियंग क्रीमल रीम में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र पुगते स्वयंभव शुभंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदायंग संगे अपंगं विपूते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदायंग संगे अपंगं विपूते एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पातशाही दसवीं त्व प्रसाद सुवैये श्रावक शुद्ध समूह सिदान के देख फिरयो कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधाधिक संत समूह अनेक मती के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे भारी पुजान के भूप पली बिद न्यावत सीस न जात बिचारे एते पए तो कहां पए भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिरे सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग निगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हैं सत हैं ही है राज हजारे भूत पवैख पवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्री पत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बसेख है

को देखा। श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेखा। शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सुनाह दुर्जान दलेंगे। भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हल्ले ना हल्लेंगे। तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे। श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े बरियार अवचार सार की धार पछैया। तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया। गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बातन ही चकचार लवैया। साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दिवैया। दानव देव फनेंद निसाचर भूत भविख भवान जपेंगे। जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे। पुन प्रतापन बाढ़ जैत तुन पापन के बहुपुंज खप।

पग ते नर फेर न देह तरेंगे। कहा पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बाक ध्यान लगायो। नात फिरियोलिए सात समुद्रन लोग गयो पर लोग गवायो। बास की ओ बिखियान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सुबैस बितायो। साज कहो सुन लेहो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। काहू ले पाहन पूज तरयो सिर काहू ले लिंग गरे लटकायो। काहू लख्यो हर अवाची दिशा में है काहू पुछा को शीस निवायो। को बुतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायो। कूर किरिया और ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। को बुतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायो। कूर किरिया और ज्यो सब ही जग श्री भगवान को।

होए चित की इच्छा तव चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ दे मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज करदै करिए सब अरन को आज संगरिए पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरिए मरण काल का त्रास निवरिए हुजो सदा हमारे पच्छा श्रीयस तुजू करिय हो रक्षा राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर दास कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जच्छन उपजायो आद अंते कह अवतारा सोई गुरु समझी यहो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जने आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बाध कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर सथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जब उदकर्ख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आकर्ख करत हो कबू तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तार है आप अपनी बूझ उचार है तुम सब हीते रहत निरालम जानत वेद भेद रयालम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूढ़ उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा

का चीन तने पैव आप अपनी बुध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप।

दुष्ट दुखित होवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह ऐ है। रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट ट्रे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे ने हर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब हुई, दुष्ट छा छुअ सके न कोई। एक बार जन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दुख ते रहा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दैले हो उबारी। सर्व ठौर मो हो सहाई, दुष्ट

गोविंद दास तुहार राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज से ती मन वजिया वधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईया शब्दोता गावो हरी केरा मान जिन्नी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रो हर नाले हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना

पंचामृत कड़ा प्रसाद हाजर है, दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद, साध संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो, दर आई समूह संगत दियां हाजरियां पेटावां दर प्रवान करनियां, शुभ मनोकामना।

दर्शन परसे है गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी। नूर अर्शों कुरसों चट्टी है, तुद डिठे सच्चे पातशाह,

जय धन भाग मथाने बाहां पकड़ ठाकुर हो किदी गुण अवगण ना पछाने गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया तिस हबो किछ सुहंदा जन नानक धन सुहागण साई जिस संग पतार वसंदा यार वे नित सुख सुखेंदी सा मैं पाई।

सत्संग जी अंतर्गत होके अपने नाम नू सुनना करना जीओ नाभ चक्कर ते सुन सकते हो जिथे बैली बटने उथे ध्यान दे सकते हो। हिरदा चक्कर जिथे दिल दी धड़कन है उस नाल सुन सकते हो। कंठ चक्कर जिथे गले चो आवाज आती है उत्थे भी प्राणी सुन सकते हैं। किसी भी प्राणी ने मस्तक ते जोर दे के ध्यान ले जाने की कोशिश नहीं करनी जीओ। नाम नू सुनना जिथे भी सुन सकते हो अंतर्गत होके सुनना करना जीओ। नेत्र बंद रखने जीओ।

लाल गोपाल गोविंद प्रभ गहर गंभीर अथा दूसर नाही अवर को नानक बेपरवाह पौड़ी लल्ला ताक लवै न को

युग अटल चबर शतर तखत दे मालक लोक अते परलोक सवार देन वाले सतगुरु दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जिंदगी दे कुछ पल सफल कर रही गुरु निवाजी साध संगत जीओ प्यार अदब सहत गुरपते प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सवारियां पासों रब्बी बाणी दा कीर्तन सरवण कीता। समा है शब्द विचार दा विच वरत के पातशाह जी जिस तरह नाल सेवा लैणगे आप संगतां दी असीस नाल विचारां दी सांझ होएगी। विचारां दी आरंभता तो पहलां मन दी एकाग्रता लई एक वार समूह संगत प्रेम नाल हाजरी लवायो ते आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी।

साच नाम आधार मेरा जन, कर शांत सुख मन आय वसया जिन, इच्छा सब पुजाइया कह नानक सुनो संतोष।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवी प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याहे। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिय कर नौ निद आवे ताए सब थाई होए सहाय। दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होए सहाय। दसाही पातशाहियां दे प्रतक स्वरूप जुगो जुग अटल धन सतगुरु।

बिसर नाही कबहू हिए ते एह बैद मन में पाव हो गुरपुरा भेट्यो वडभागी

द्वितीया नास्त एक टेक निःचल मत सहज समाद उन मन लिव लाई है द्वितीया नास्त एक टेक निःचल मत सहज समाद उन मन लिव लाई है जुगो जुग अटल चवर शतर तखत दे मालक लोक अते परलोक सवार देन वाले सतगुरु दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जिंदगी दे कुछ पल सफल कर रही गुरु निवाजी साध संगत जीओ प्यार अदब सहित गुरफते परवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सवारियां पासों रब्बी बाणी दा कीर्तन सरवण कीता। समा है शब्द विचार दा विच वरत के पातशाह जी जिस तरह नाल सेवा लैणगे आप संगतां दी असीस नाल विचारां दी सांझ होएगी। विचार आरंभण तो पहला मन की एकाग्रता लई एक वार समूह संगत प्रेम नाल हाजरी लवायो।

मन सहज भया हर पाया बलराम जियो गुरमुख मिलिया सुभाई हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया अन दिन हर ले बलाई मन चिंदिया फल पाया स्वामी हर नाम वजी वादहाई हर प्रभ ठाकुर काज रचाया तन हिरदह नाम विगासी जन नानक बोलै चौथी लावै हर पाया प्रभ अवनासी हर प्रभ ठाकुर काज रचाया तन हिरदह नाम विगासी जन नानक बोलै चौथी लावै हर पाया प्रभ अवनासी। हाँ जी।

बंब बन लो सारे नाल अपने लक्का दे टैंक दुश्मन भाला जाबे हुने उड़ाया टैंक दुश्मन भाला जाबे हुने उड़ाया।

पिस्टल गन्ना गोलियां वाला मी बरसाना है। पिस्टल गन्ना गोलियां वाला मी बरसाना है। फौज भारती ताई सिंगो सबक सिखाना है। फौज भारती ताई सिंगो।

कुदरत करे बिचार, कुदरत बिचारे धारण धारे, जिन की आसो जाने, आपे वेखै आपे बुझै आपे हुक्म पछाणै, जिन किछ किया सोई जाणै ताका रूप अपारो, नानक किसनो बाबा रोइयै बाजी है इहो संसारो, वडहंस महला पहिला दखणी, सच सिरंदा सच्चा जानियै सचड़ा पर्वत गारो, जिन आपी न आप साजिया सचड़ा अलख अपारो, दोए पुड़ जोड़ वे छोड़ियन गुरबिन घोर अंधारो, सूरज चंद सिरजियन अहनिस चलत विचारो, सचड़ा साहिब सच तू।

कहु नानक बिन हर भजन परत ताहे जम फंद जौ सुख कौ चाहै सदा सरन राम की लेह कहु नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख देह माया कारण धावही मूरख लोग अजान कहु नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम तिह जान हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान मन माया मैं फद रहियो बिसरियो गोबिंद नाम कहु नानक बिन हर भजन।

जम फंद सुख मैं बहु संगी भये दुख मैं संग ना कोए कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए जन्म जन्म भरमत फिरयो मिट्यो न जम को त्रास कहो नानक हर भज मना निरभय पावह बास जतन बहुत मैं कर रहयो मिट्यो न मन को मान दुरमत स्यो नानक फदयो राख लेहो भगवान बाल जवानी अर बिरद फुन तीन अवस्था जान कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान करनो हुतो सो ना कियो परयो लोभ कै फंद नानक समयो रम गयो अब क्यो रोवत अंध मन माया मैं रम रहयो निकसत नाहिन मीत नानक मूरत चितर ज्यो छाड़त नाहिन पीत नर चाहत कछ और की और पई चितवत रहयो ठगौर नानक फासी गाल परी जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो ना कोए कहु नानक सुन रे मना हर पावे सो होए जगत पिखारी फिरत है सब को दाता राम कहु नानक मा

जग रचना सब झूठ है जान ले हो रे मीत। कह नानक थिर ना रहै ज्यो बालू की पीत। राम गयो रावण गयो जा कौ बहु परवार। कहु नानक थिर कछ नहीं सुपने ज्यो संसार। चिंता ता की कीजिए जो अनहोनी होए। एहु मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। जो उपजो सो बिनस है पर आज कै काल। नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। दोहरा बाल छुटक्यो बंधन परे कछु ना हो तो उपाय। कहु नानक अब ओट हार गज ज्यो हो सहाय। बाल हुआ बंधन छुटे सब किछ हो तो उपाय। नानक सब किछ तुमरे हाथ में तुम ही हो त सहाय। संग सखा

कहो नानक एह जगत मैं किन जपियो गुर मंत राम नाम और मैं गहयो जाके सम नहीं कोए जेह सिमरत संग।

संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब आधारो। जे को खावे जे को पुंचे तिसका हुए उदारो। एह वस्त तजी रह जाई नित नित रख और तारो। तम संसार चरण लग तरिये सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग कीतोई। मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पयोई। तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलया। नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थी वै हरिया। तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलया। नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थी वै हरिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप है आठौ नंदन। प्रथम राग भैरव वै करही पंच रागनी संग उचरही। प्रथम भैरवी बिलावली पुनिया की गाव है बंगली। पुन असलेखी की पई बारी ए भैरव की पाचौ नारी। पंचम हरख दिसाख सुनाव है बंगालम मद माधव गाव है। ललत बिलावल गाव ही अपनी अपनी भांत अष्ट पुत्र भैरव के गाव है गायन पात्र। द्वितीया माल कौशक आलाप है संग रागनी पाचौ थाप है। गूंड करी अर देव गंधारी गंधारी सिहुति उचारी। तनासरी ए पाचौ गाई माल राग कौशक संग लाई। मारू मस्त अंग में वारा प्रबल चांड कौशक उबारा। खाओ खाट आओ भौर आनंद गाए अष्ट माल कौशक संग लाए। पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सोत। उठ है तान कलोल गायन तार मिलाव ही। ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई। सरस अहिरी लै पार जा संग लाई पांचौ वार जा। सुरमा नंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए। सरस बाण आओ आहे बिनोदा गावह सरस बसंत कमोदा। अष्ट पुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी। कशेली पट मंजरी टोडी कही अलाप का मोदी आओ गुजरी संग दीपक के थाप। कालंका कुंतल आओ रामा कमल कुसम चंपक के नामा। गौरा आओ कानरा कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना। सब मिल श्री राग वै गाव है पांचौ संग बरंगन लाव है। बैरारी करनाटी धरी गवरी गाव है आसावरी। तेह पाछ है सिंधवी अलापी श्री राग स्यो पांचौ थापी। सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर अष्ट पुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर। खस्टम मेघ राग वै गाव है पांचौ संग बरंगन लाव है। सूरठ गोंड मलारी धुनी पुन गाव है आसा गुण गुनी। उचै सोर सुहाव पुन कीनी मेघ राग स्यो पांचौ चीनी। बैरा धर गज धर के दारा जबली धर नट आओ जल धारा। पुन गावह शंकर आओ श्यामा मेघ राग पुत्रन के नामा। खष्ट राग उन गाए संग रागनी तीस सब।

सबै पुत्र रागन के अठारह दस बीस राम कली सद एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोए भगत वछल तेहो लोए जियो गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोए जियो अवरो ना जान है शब्द गुर कै एक नाम त्यावहे प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावहे आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया हर भाणा गुर पाया गुर जावै हर प्रभ पास जियो सत गुर करे हर पह बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो पैज राखहो हर जन है केरी हर देहो नाम निरंजनो अंत चल दिया होए बेली जमदूत काल निखंजनो सत गुरु के बेनते पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो हर धार कृपा सत गुर मिलाया धन धन कह साबास जियो मेरे सिख सुनो पुत भाई हो मेरा हर भाणा आओ मैं पास जियो हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो भगत सत गुर पुरख सोई जिस हर प्रभ भाणा पावे आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गल में लावे तुसी पुत भाई परवार मेरा मन वेखो कर निरजास जियो हर मन वेखो कर निरजास जियो तुर लिखिया परवाना फिरै नाही गुर जाए हर प्रभ पास जियो सत गुर भाणै आपने बह परवार सदाया मत मैं पिछै कोई रोव सी सो मैं मूल ना पाया मित पैजै मित बिगसै जिस मित की पैज पावे तुसी विचार देखो पुत भाई हर सत गुरु पै नावे सत गुरु परतख हुदै बहराज आप टिकाया सब सिख बंदप पुत भाई रामदास पैरी पाया अंते सत गुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करिया हो निर्बान जियो केसो गोपाल पंडित सद्या हो हर हर कथा पढ़ै पुराण जियो हर कथा पढ़िया हर नाम सुनिया बेबान हर रंग गुर पावे पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल हर सर पावे हर पाया सत गुर बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जियो रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो सत गुर पुरख जे बोलिया गुर सिखा मन लई रजाए जियो मोहरी पुत सनमुख होया रामदास पैरी पाए जियो सब पवै पैरी सत गुरु केरी जिथै गुरु आप रखिया कोई कर बखीली निवै नाही फिर सत गुरु आन निवाया हर गुर है भाणा दी वडियाई तुर लिखिया लेख रजाए जियो कह सुंदर सुनहो संत हो सब जगत पैरी पाए जियो हर गुर है भाणा दी वडियाई तुर लिखिया लेख रजाए जियो कह सुंदर सुनहो संत हो सब जगत पैरी पाए जियो।

गोला बैठा केल करे, केल करेंदे हांजनो अचिंते बाज पए, बाज पए तिस रब दे केला विसरियां, जो मन चेतना चेते सन सो गाली रब किया, सो कहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। सतनाम वाहे गुरु साहिब जी।

चेत सनाही दुनिया फन खाने। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सोहन बेनती करते हां सत्कारयोग सरदार रणबीर सिंह जी परमार।

0: तित सदगुड़ पई लड़ वासा पानी पावक तनहे किया
1: पंख जो मो पग नहीं चाला हम देखा ते डूबी अले
0: मन एक न चेतस मूड मना हर बिसरत तेरे।

मिल बोच है, खोज शब्द मैं ले हो। राज करेगा खालसा, आकी रह न कोए, नो होए सब मिलेंगे, बचे शरण जो होए। वाहे गुरु नाम जहाज है,

कौन जाने पीर पराई, हम ना ही चिंत पराई। रहाओ अगम अगोचर अलख अपारा, चिंता करो हमारी। जाल थाल मही अल पर, पर, पर